0: सत्पुराण के धर्म पुरम पर साई हुई सुमू हाजम साथ संगजी केतल दिंदा हां उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु। बेनती करता हां हाथ जोड़ के सारे सिंगत धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं नमस्कार करिए ते रसना तो आके
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: एक बारी कृपा करो जी मुख मस्तक रसना पवित्र करते हुए डूंगी डूंगी नमस्कार भी करो ते रसना तो आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिन्हां महापुरुषां दी पवित्र याद मना रहे हां राजा साहब जी नाभ कमल साहब जी उन्होंने आज मैं पढ़ रहा सां जिंदगी नूं बिल्कुल छोटी जी और अस्थिर दस्या है ते उचेचे तौर ते एक वचन कीता उन्होंने राजा साहब जी ने कि जेड़े प्रभु सिमरन नहीं करते परमात्मा नूं याद नहीं करते उन्हां दी किते धोई नहीं बुनी चाहिए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मनुखता हजे भी प्रभु नूं बहुत घट याद करती महापुरशां दे ये केवल राजा साहब का ही वचन नहीं है किसी भी कौमीयत अंदर किन्ने वड्डे वड्डे औलिया अंबिया पैगंबर हादियाने दीन भक्त जन और गुरु साहबान होए ने वो सारा ने इको गल आखी है कि भजन सिमरन तो बगैर ये देही जेड़ी ना ये उजाड़ दा इका सिमरन करांगे ता दर कबूल होवेगी। राजा साहब वचन करते ने कहंदे ने इंसान तू इन समझदा तेन ये मुफ्त मिल गई है मुफ्त मिल गई है पर यह ढेर ला दो दमा का काउंटलैस दी मनी दे दो ता भी यह प्राप्त नहीं होंगी इसलिए इसनू चंगा सुथरा सोहना बना ले सानू पुनः पुनः यह कहना चाहिदा है जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक शब्द का मैं मुकसद जी अर्थ करा धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह सोढ़ी सुल्तान जी को साडे तुहाडे वड्डे वडेरा ने बिल्कुल अर्ज की होवेगी कि मालिक कृपा करके ये दसो कि भवजल तो पार किवें होईदा है भवजल तो पार किवें होईदा है ते सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह कहन लगे सतनाम का सिमरन करया करो। फिर यह इंसान कहन लगे साडे वड्डे वडेरे भाई जी किन्ना चिर करिए महापुरुष कहंदे ना भाई माला फेरिया करो वीर बजुर्ग जेड़े इन्हां कोल जांदे ने माता मां भैणा वो चट दूजे नाल सवाल करदे महाराज जी किन्नियां माला फेरिया करिए। जिस विद्यार्थी नूं यह पता लग जाए कि एग्जाम बड़े डाढ़े ने इम्तिहान बड़े ग्रिम ने सख्त ने लेकिन कोई बहुत ही वधिया गैस लाने वाला मेरी बेनती ध्यान न सुनना मैं मशहूर हाँ आपकी किताब को बैठ के सरवण कर रहे हो विद्यार्थी ने एग्जाम विच बैठना है लेकिन डरता पिया है उसका टीचर उसनू गैस ला के दे दे गैस उसका 100% होवे ओ बच्चे नूं एक या दो दिन पहले दस दे पे बेटा होर कुछ ना करी किड्डी छोटी है उसने अपने गैस ते बेटा तू होर कुछ ना करी जो मैं तेनू अज गैस दस रहा ना 100% यही सवाल आने ते इन्हां दे आ जवाब लिखने ने ते तू फिर डिस्टिंक्शन पास हो जाए उसे सारे पढ़े हां गां पढ़ांदे भी हां बच्चे नूं इदां हुंदा ना गैस ला दिओ जी ते फिर बच्चा बहुत वधिया 100% मार्क्स लैके पास हो जाता विद डिस्टिंक्शन पास हुंदा वजीफा भी लग जाता। असी तुसी सारिया ने सत्संग जी भवजल तरन दे एक इम्तिहान विच बहना है भवजल किवें तरना भवजल किवें तरना है ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਸ ਲਾ ਦਿੰਦਾ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੂਈ ਨੇ ਆਉਣੀ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਆ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ ਮਿਹਨਤ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਲਾਹੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਸੇ ਤੁਕ ਨਾਲ ਆਖੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਕ ਹੈ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਪਾਪਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਗੈਸ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ ਹੱਥ ਪਲਕ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਫੇਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਨੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਈ ਚਲੋ 138 ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋ ਫੇਰ ਲਈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੇਖ ਲਾ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਰ ਲਾ ਸਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਹੈ ਕਠਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਇਹੋ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਜਾਣ ਨੀ ਦੇਣਾ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਪੁਨਾ ਪੁਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕ ਜੀ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ

0: जमन नानक को गुण ए मत दीनी जब हर पाव जल तरना।
1: कैसा 100% गैस और फिर साढ़े सामने ही है। टीचर ने तो एक बार दस देता तो उनके बस में काम तेरा हो गया तो पास हो गया बस हूं अगले साल फिर गैस लावांगे। नहीं, गुरु साहबान ने ऐसी कृपा की इथे रखे दिता संभाल के रख दिता पे जो जदों जेनू जिथे जरूरत पवे ए गैस हमेशा ही काम आई जाने ने हमेशा ही। इसलिए इन्हों इथे महफूज करके रख दिता गुरु अर्जन देव। सच्चे पातशाह एक होर तो कहने ना।

अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा।

कै मन लाजुम रसा, अवरा पै कै मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई, जो मन दी बिरथा है ये वाहगुरु अगे आख, किसी मनुख कोल ना को। ये बंदा मन दी बिरथा, मन दी गल लोकां पास करदा है, मन लोकां पास फरोलदा है। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा वो तेनू भी दुख होर सुना दूंगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वाहगुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख, जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वाहगुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास, तां सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है गुरु नू आ। महाराज वचन कर दिए ने, जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै, ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कड़ास। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। वो वागुरु अगे बेनती कर, जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नूं दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच इस शब्द विच ऐसी प्रेरणा

करता रखा उस कर कर जीवा नानक नाम महारस लिखा अंदिन मन पुस्तक करया करो भाई गुरु जी पुस्तक मन में

गुरु इतना मिठा हो सिख तो कदे भी तोड़ा न पड़े। प्यार करे बचन चंगे बचन करो भाई, चंगयाई दुनिया में बढ़ लेंगे। सिख दी ये ड्यूटी है, आप जपो अमरे धाम।

ila ilke kadri lale khub juz aashik nadan gait kar kimte yaqut dan chashm gohar marna eda tarjuma kise mahapurush ne kita hai premi paajo e saramat premi paajo e saramat nu और न कोई जाने इस यकूत सुचे की कीमत कोई जोरी अख पछा गंदे गीतों सुन वाला अमृत कीर्तन की सार क्या जाने कहियां सुचे दिए जान वाला सत्संग रूपी अमृत रू क्या समझ सकता है तो भाई साहब जी देखने प्रेमी बाजो इस रमजनो और न कोई जाने इस यकूत सुचे की कीमत कोई जाने तो सारे जोरी बच रहे कीर्तन निर्मोल हीरे का वंद कर रहे हो प्यारे हो केड़े भागा वाले पाओ उस दात का वंद पै कर दे जेदा मुल ही कोई अज साल सराय में फर्क कर पूछिया जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ

गुरु की प्राप्ति होगी, फिर सारिया जातों इसी चीज की काट भी रहेगी जिन्होंने पूरे गुरु की बख्शिश प्राप्त

मांगो राम ते एक दान, आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। मे ऑल माय डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम ओ लॉर्ड। पॉज। मे योर फीट अबाइड विद इन माय हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स। मे माय माइंड not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.

0: महला पहला
1: ये मुहक का कर्म है कर्म पितरी दे
0: अगे वसे आनी है पितरी चो करे वड़ी हद लाल

बादशाह साहब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी का ये पवित्र प्यारा शब्द अपन सबना ने इसका रस माने। सब तो पहला आओ इस शब्द के अर्थ विचार महाराज जी ने पेश किए हैं।

متبرد öyle hissediyor. Guru Maharaj'ı longing present करते हैं, longing पेश करते हैं, एक प्यास, जरूरत, एक तड़प का जिक्र करते हैं और आते हैं मन लोचे हर मिलन को, मेरा मन परमात्मा नु मिलना लोचदा है, इसके अंदर बड़ी भारी लोचा है। जदों परमात्मा नु मिलन दी जीव के अंदर भुख लोच प्यास पैदा हो जाए, समझो उसके अंदर बाकी तमाम चीजां ले वैराग हो गया। वैराग का अर्थ के बाकी तमाम चीजों के विचों वो डिसइंटरेस्टेड हो गया, ही हैज नो मोर इंटरेस्ट इन वर्ल्डली थिंग्स। उसके अंदर एक ही प्यास है कि वो उसको जो बनाने वाला है, सारी सृष्टि को साजन वाला है, जो उसमें पानी दिंदा है, ऑक्सीजन दिंदा है, धरती दिंदा है, अनाज दिंदा है, वो कौन है? जिसने उसको बनाया है वो कौन है? वो अपने असल हर जी माता, हर जी पिता, जो सपना का पिता माता है, उसको मिलना चाहता है और उस अवस्था के मन दुनिया वालों वैरागवान हो जाता है। दुनिया वालों मन जो है वो उदास हो जाता है, भाव उसमें कोई और किसी चीज की रुचि नहीं रह जाती, उसकी रुचि बदल जाती। बाबा जी आखते हैं इस अवस्था से जाके जो जिज्ञासु है उसकी रुचि बदल गई है, उस मन की अवस्था यह है कि मेरा मन एक ही प्रिया मांगे। मेरा मन जो है वो एक उस प्रिया नू, अपने प्यारे नू ही मंगता है, होर किसी चीज के नाल वो सैटल नहीं हुंदा, तृप्त नहीं हुंदा। मेरा मन एक ही प्रिया मांगे, मन लोचे हर मिलन को। मन जो है वो दिन रात उस अकाल प्रभु दे दीदारां लई, उस दे मिलन दे लई बेचैन रहिंदा है, अते अंदर एक सवाल पैदा रहिंदा है, क्यों दर्शन पाईया, किमें उसका मैं दर्शन करां, किमें मैं उसनु मिलां। अते प्यास इतनी गहरी हुंदी है, मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बोलाईया। इस दे विच ए आख्या है कि ऐ मेरे साहिब, जे मैनू एक बिंद, एक पल, एक छिंदे वास्ते भी तू बुला लवें, मैनू मिल पवे, मैनू मौका दे देवें, तो मैं समझांगा मैं लखां पा लें, मैं लख विड़ते साहिबा, मैं सब कुछ पा लिया, मैं लखां करोड़ां हासिल कर लिया, जे मैनू एक मोमेंट दे वास्ते भी अपना मिलन दे दें, अपने दीदार दे दें, अपने आप में मिला लूं, क्योंकि मैं सब कुछ करके देख लिया है,
किसी भी चीज च तृप्ति नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, जॉय नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल है, फेक है, मोमेंटरली है, अते दुख का कारण है। दुनिया का हर सुख जो है वो नाल ही नाल दुख भी दिंदा है। इस करके कहते हैं मैं चारे कुंडा पालियां, मैं हर थां ते पाव, मैं सब कुछ देख लिया है, तुद जेवड़ ना साईयां, ऐसाई तेरे वर्गा कोई नहीं है। मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, एक प्यास है, एक उमंग है, एक तमन्ना है, एक जाचना है, एक लॉन्गिंग है कि तेरे दर्शन मैनू किवें हो। शब्द का पहला हिस्सा जो है उस दे विच महाराज जी एक जिज्ञासा पेश करते हैं, अते ऐसा जिज्ञासु महापुरखां दे संतां दे पास आके बेनती करता है। उस बेनती नू आओ गाइए, दिलों गाइए।

इतना खूबसूरत जवाब देता है। कहते मन अर्पयो। सुखमनी साहिब जी महाराज जी ने आख्या है ना, कहते हैं

तब तू नाही। जब तक वो हम है मैं हाँ, वो हस्ती खलोती है उदों तक फिर असल हस्ती दे दीदार नहीं हो सकता। असल हस्ती दे दीदारां दे वास्ते इस झूठी हस्ती नूं मरना पएगा। और होर कोई भी रिश्ता संभव नहीं है जिसके सामने ये मर सके। बच्चा पेरेंट्स के सामने मर नहीं सकता, अपनी हस्ती नूं त्याग नहीं सकता, पेरेंट्स नूं वो जवाब दे सकता है, बेशक पोलाइटली दे दे, उन्हां दे नाल डिसएग्री कर सकता है। पति पत्नी का भी जो रिश्ता है उस दे विच भी पत्नी पति दे नाल डिसएग्री कर सकती है, पति पत्नी दे नाल डिसएग्री कर सकता है। भरा भरा का रिश्ता है उत्थे भी कोई भी भरा दूसरे भरा नूं एबसोल्यूटली सरेंडर नहीं कर सकता, दोनों की आपो अपनी अथॉरिटी है, आपो अपनी हस्ती है। सो साडी दुनिया च कोई भी अजिहा रिश्ता नहीं है जो रिश्ता साडे लई एक ग्राउंड बने कि जिथे असी अपनी हस्ती नूं मिटा सकीए, अपनी हस्ती नूं सरेंडर कर सकीए, अपने आप नूं वेच दईए ते विकी हुई चीज समझिए कि हुणे मालक मेरा ए है, मेरी अपनी कोई हस्ती नहीं रह गई। गुरु महाराज जी कहिंदे हन, मन अर्प्यो होमे तजो इत पंथ जुलाई। अपना मन तुहानूं अर्पण करना पैणा है अते फिर हर गुरु दे वचन नूं तुहानूं स्वीकार करना पैणा है। तुसीं किसे भी वचन की उलंघना नहीं कर सकते, वो तुहाडा राइट ही नहीं है, तुहाडा बिल्कुल राइट नहीं है। गुरु वल्लों डिसिपलिन मिलेगा और उस डिसिपलिन नूं तोड़न दी तुहानूं अथॉरिटी नहीं। अपना आपा मर गया ना, अपनी होंद कोई रही नहीं गई। उस डिसिपलिन दे विच चलदिआं, उस गुरु दे वचना दे आधार ते चलदिआं अपनी फिर जिंदगी कुछ नहीं रह गई। जो गुरु दे वचन हन, जो गुरु दे फरमान हन, जो गुरु दा हुक्म है उसनों कमाना है, सिर्फ जिंदगी दा मनोरथ सिर्फ यही रह जांदा है। इस वेले साडी जिंदगी दा मनोरथ जो है वो जो साडे मन चाहुंदे हन वो है, जो सानू आले दुआले इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं वो है। पर जदों कोई गुरु का डिसाइपल बन जाता है उदों उसका एक ही मनोरथ होता है कि वो अपने गुरु के वचना नू कमांदा है, उन्हां च उसनू नफा हो जाए तां भी ठीक, नुकसान हो जाए तां भी ठीक, उन्हां वचना नू कमांदिया होया उसकी डैथ भी हो जाए तां भी ठीक। अब हम चली ठाकुर पै हार, ऐ ठाकुर हुण मैं तेरे सामने आके हार गई, हार मन ली। जो हार मन लेंदा सरेंडर कर दिंदा, दूसरे के कब्जे च आ जाता, दूसरे की अथॉरिटी। जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार, हम तेरी मर्जी है पावे तू मेनू रख या मार। दुनिया च केड़ा ऐसा रिश्ता है जिसनों असी एक कह सकीए कि तेरी मर्जी है, जदों मर्जी मेनू मार दे। एक झटका मारिया होया सहार नहीं सकते, ते मार देना तो बहुत दूर की गल है। गुरु महाराज जी कहते सिर्फ एक गुरु महापुरुष गुरु सतगुरु ही एक ऐसी हस्ती है जो कि तुहाडे लिए ग्राउंड बनती है, तुहानू हैल्प करती है, जिस दे राही तुसी अपनी इस हस्ती नू मार सकते हो। और इस हस्ती नू मारे तो बिना मन नू शांति नहीं आ सकती, मन नू ठंडक नहीं मिल सकती, मन नू तृप्ति नहीं मिल सकती। जन्मां जन्मांतरां दे रोग अते दुख कष्ट जो हन वो जा नहीं सकते। संतां नू जाके बेनती कीती कि मैनू दसो उस प्रभु नू मिलन दा मार्ग की है, मैं उसके दीदार करने चाहना हाँ। वो कहिंदे बस मार्ग यही है, अपना मन गुरु नू अर्पण कर दे। अते अपनी होमे नू त्याग दे। वो तां ही पॉसिबल हो सकता है जे असी उसकी रजा दे विच आ जाइए, जे असी उसकी रजा दे विच आ जाइए। कई दफा सानू पता हुंदा है कि भी आ गल गुरु आशय अनुसार सही नहीं है, पर फिर भी असी करते हैं कि लोकाचारी रखनी पैंदी है, लोकाचारी रखनी पैंदी। उत्थे असी जानते हैं भी गुरु महाराज इस गल नाल सहमत नहीं हैं, पर असी उस लाइन नू क्रॉस कर जाने हैं, उस वचन की उलंघना कर जाने हैं, उसनू टप जाने हैं, अपनी मन मर्जी उत्थे इस्तेमाल कर जाने हैं, उत्थे रिश्ता टुट जाता है।

शब्द है कांडा मोहल्ला चौथा पड़ताल। मन जापहो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल, हर गुरमत गुरमुख कड़ टकसाल, हर हो किरपाल। किरपा होवेगी मन नाल जपो सतनाम। कोई भुलेखा नहीं रहिंदा, थोड़ा जा ध्यान देने की लोड़ है। किरपा होएगी, हो दो बार आख्या, होवेगी किरपा, होवेगी किरपा। पर मन जापहो राम गोपाल, वो सृष्टि नु पालन वाला जेड़ा जर्रे जर्रे च है, ओनू मन करके जपो। मन और जबान एक करके आखो सतनाम। यह मोलक रतन है। मन जापहो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल, हर गुरमुख कड़ टकसाल, हर हो कृपा। ये अस्थाई है, ये चार ताल च। पहला अंतर है तुमरे गुण अगम अगोचर, एक जी क्या कथे बिचारी। तेरे गुण बेअंत ने ते मेरी एक जबान की कह सकती है। तुमरे गुण अगम अगोचर, एक जी क्या कथे बिचारी। राम राम राम राम लाल, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। तेरी गति नू कोई नहीं जान सकदा, सब आखो सतना। हर की गत ने को जाने, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। हों हर जब पई निहाल निहाल निहाल, तेरी गति नू तू अगाध बोध है, कोई जान नहीं सकता। पर यह जरूर है कि जेड़ा जपूगा ना वो निहाल निहाल निहाल हो चुका। तू बेअंत है, तेरे गुण बेअंत ने, कोई जान ही नहीं सकता, बेअंती है। आप शब्द रोज पढ़ते हैं, तू सुल्तान कहा हों मियां, तेरी कौन वडाई। किसी बादशाह नू क्या जवाब मियां जी, तू सुल्तान कहा हों मियां। एक बादशाह नू क्या जाए मिया जी, ये कोई वडियाई तो नहीं। गुरु नानक साहब कहते ने तू एडा वड्डा है, जो तेरी उस्तत होने तक हो रही है ना वो इन्नी की है कि किसी बादशाह नू मियां कहा जाए। तू सुल्तान कहा हों मियां, तेरी कमर वडाई। इस शब्द विच महाराज कहते ने तुमरे गुण अगम अगोचर, एक जी क्या कथे बिचारी। राम राम राम राम लाल, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। हों हर जप पई निहाल निहाल निहाल। दूसरा अंतरा है हमरे हर प्राण सखा, स्वामी हर मीता, मेरे मन तन जी हर हरे हरे राम नाम धन माल। जांको भाग तिन लियो री सुहाग, हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत, जन नानक हर जप पई निहार निहार।

अज श्री अबचल नगर विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर दशमेश पिता दे चरणा च बेनती करके नंद लाल जी कह रहे हैं, हे सतगुरु, सिख पंथ की सिरजना करन वाले खालसा पंथ नू रचनहार साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरसिख की रहत नू आप दर्शाउणा करो। गुरसिख का कर्म की है? सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने भाई नंद लाल दे सवालां दा

पहला नियम है गुरसिख दा के गुरु की संगत करनी, सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके, ते जेड़ा सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउन वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा, प्रात काल सत संग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा, गरीब नवाज कहंदे हन ओ गुरसिख तनखाइया है, ओ गुरसिख गुरसिख नहीं गरीब नवाज।

अगला कर्म है भी दसवंध जड़ी किरत कमाई करनी उस विचों दसवां हिस्सा गुरु के अर्पित करना ते गरीबां गुरबियां दी सेवा करनी। दसवंध गुरु

चोरी ठगी यारी दा पैसा एकत्र कर दें साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा है ते जेड़ा गुरु नूं दसवंध नहीं देंदा किरत दस ना हुंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची दरगाह

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैण उसनू मां भैण दा रूप जाने, धी नू धी दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नू आज सचे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैण जो आवे संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करे क्रोध, कन्या मूल ना देवे सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैण नू मां भैण ना जाने, धी नू धी दा रूप ना जाने, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जेड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बच्ची दा गला घुट देना, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उसनू बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जेड़ा है वो सपुत्र है, बच्ची जेड़ी कौर है ते छोटा सपुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नू

सात जन्म कुश्ती होए मरे, सिख होके सिर ते टोपी धर लैनी, टोप ले लेना भाव के पग बन के रख देनी, माया वाली पग ला बन के रख देनी, काफी दिन तक बनी रहनी, रोजाना उसनु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु अज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने, जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते, जे अपना दस्तारा अपने हथी रोजाना सजाओ, खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु अज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा, ओ सत जन्म कोड़िया दे जन्म दे विच बतीत करदा। गरीब नु अज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते, कोड़ा हो जाता।

एक वाहिगुरु अकाल पुरख महाराज दे दिते हुए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। भाई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इन्हां दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे। जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हूबहू उसे तरह लिखे जान बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वाधू चंगी गल है। क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने

साहब ते जाप साहब तो बगैर जेड़ा गुरसिख खाना खांदा ना खुराक खांदा जेड़ा गुरसिख भोजन छकदा जल पान छकदा गरीब नवाज कहंदे ओ भोजन नहीं ओ खुराक नहीं ओ विस्टा दा किरम होके ते ओ विस्टा दे अंदर मुंह मार रहा है बिना जपजी साहब ते जप साहब तो बगैर बिन जप जाप जपे बिना जो जेवै प्रसाद सो बिस्टा का किरम होए जन्म गवायो वाद व्यर्थ जन्म गवा दिता है। इथों सिद्ध है गुरु के सिखो अमृत वेले हो उठ के जपजी साहब दा पाठ ते जाप साहब

रोजाना दा उचारण वाहगुरु होवे, अठे पैर काम ते भी वाहगुरु वाहगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहगुरु करे, घर विच बैठा वाहगुरु करे, रसना दे उपर वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु दा टिका होवे, ते वाहगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे, ऐसा वाहगुरु हिरदे च वसे भाई वाहगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भाई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछे। ए ना होवे भाई गुरसिख नूं वेख के राह ही छड़ जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है, गरीब नवाज सचे पातशाह ने आने वाले समय नूं वेख्या, इस करके ए पूरने पा दिते गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा।

शस्त्रहीन एक कबू न होई रहतवान गुर का सिंह सोई। गरीब नवाज कहंदे जेड़े पांच ककार दिते ने ना खालसे नू पहनाए ने, पूरी यूनिफॉर्म तो बगैर पूरी ड्रेस तो बगैर गुरु का सिख सिंह नहीं रह जांदा, खालसा नहीं रह जांदा। जिवें किसे ऑफिसर दी यूनिफॉर्म होवे वर्दी होवे उनू लाजमी है भी जदों ऑफिस विच जावे जदों काम ते जावे जदों मालक दी हजूरी अंदर हाजरी होवे उदों ओ दित्ती हुई ड्रेस नू पहने। गरीब नू आज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नू पंज ककार बख्शे ने ते गरीब नू आज कहंदे मैं ए बर्दाश्त नहीं करांगा भी मेरा गुरसिख पंजा ककारां दा धारनी ना होवे, ला के फिरदा रवे, ऐसी गल ना होवे। शस्त्रहीन ए कबू ना होई, कदे भी शस्त्रहीन ना हो। शस्त्र हमेशा पास रखे, शस्त्र ते शास्त्र। शास्त्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते शस्त्र है ए जेड़े पीर हन महाराज ने दिते ने रखिया वास्ते। ए हामी भरनगे सच्ची दरगाह दे अंदर के गुरु का सिख शस्त्रां दे नाल शास्त्र दी पूजा करदा सी। शस्त्रहीन ए कबू।

जुआ असत झूठ बोलना, चोरी करनी, मदरा शराब पीनी, नशियां दा सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी दा सुपना भी इस दी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशां खेडनियां, कार खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदिक दी वरतों ना करनी। गरीब नूं अज कहिंदे इह पंज ऐब ने जगत दे, ए सिंह तज जावे, ओ जवान गिणिया जाएगा।

मेरो दर्शन नहीं ते पापी त्यागे देख। वो ते अपने आप नु सिख ना मनन जिन्हां ने केस मनाए हुए ने, मेरे तां सिख ओ भी नहीं जिन्हां ने अमृत नहीं छकिया, जिन्हां ने पाहुल नहीं लई ते केवल केस धारण कीते हुए ने ते सबनों मोहरे आके बहन दा दावा करदे ने। उची उची आवाज गुरु महाराज की दिती हुई बाणी दा याप जाप करदे ने पर आप पगाउंदे नहीं। केस रखे हुए ने, पाहुल नहीं छकी हुई, खंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया होया, वो भी मेरे सिख नहीं। ते जेड़े सहजधारी ने, जेड़े अपने आप नूं कहाउंदे ने केस मना के भी गुरु के सिख हां, सिखी अंदर है, वो मेरे सिख किवें हो सकते ने। साहिब गरीब नूं आज सच्चे पातशाह महाराज ने पवित्र वाक भाई नंद लाल नूं सारे दे सारे दिते। भाई नंद लाल ने यह वाक गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज दे लिख ले, संकल्प कीता गरीब नवाज समयां दा समां बतीत हो जाएगा कि यह रहत मर्यादा सिखां दे अंदर ज्यों दी त्यों चलेगी। ये गरीब नवाज कहन लगे नहीं, मेरे सिख मेरा खालसा राज दे अंदर आके भटक जाएगा, ते जदों ये भटकेगा खुआर हो जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, क्योंकि इस नूं राज पाउंदा नहीं। ते जदों इसने राज नाल प्यार कीता उदों इसका प्यार गुरु नाल टुट जाएगा, सिखी दी दात मूलों निकल जाएगी। कुर्सी नाल प्यार हो गया ते गुरु नाल प्यार नहीं रहेगा, तख्त नाल प्यार नहीं रहेगा। जेड़ा गुरु के तख्त दे सामने अपनी कुर्सी डाल लेगा वह गुरु का सिख नहीं होएगा, वह खुआर हुंदा चला जाएगा। ते फिर समयां दा समां बतीत होएगा, इतनी खुआरी होएगी, उस खुआरी नूं हरन वास्ते फिर गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कलकी रूप अवतार धारण करनगे। निरंकार दे हुक्मां मुताबक लिखिया गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने।

गुरसिख दे जीवन दा नक्शा गुरु के सिख दा जीवन ऐसा होवे पवित्र होवे ते फिर ओ गुरु दियां खुशियां प्राप्त हासिल कर जाएगा। नहीं ते गरीब नवाज कहंदे हन रहत बिना ना सिख कहावै रहत बिना दर चोटां खावै रहत बिना सुख कबू ना लह कदे भी सुख उसनू नहीं मिलेगा। जिसने रहत त्याग दिती है ना पाहल पी कुकर्म कमावत पाहल पी के कुकर्म कमाउंदे ने उन्हां नूं तनखाइया दंड दिता जांदा। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज उन्हूं कहंदे भी खालसा पंथ की बरादरी चो उन्हूं छेक दिता जावे जिहड़ा अमृत छक के ते कुकर्म कमाउंदा। भाई नंद लाल गरीब नवाज सचे पातशाह दा प्यारा सिख इसने ये रहतनामा गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कोलों लिखिया। भाई प्रहलाद साहब जी ने लिखिया भाई देसा जी ने लिखिया बड़े बड़े हवाले हैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दिते हुए इस रहतनामे दे। गुरु के सिखो साहब सचे पातशाह जी महाराज जी के वतना मुताबक अपने जीवन नूं बतीत करिए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज फरमान।

भगत नामदेव जी इस शब्द दे विच जिस थीम नू असी अज आरंभ करना है, जिस विचार दी लड़ी आरंभ करनी है, वो है नाम। ते भगत नामदेव जी अपने जीवन का जो निचोड़ है वो दस रहे हैं, ताकि सानू भगत जी के इन शब्दों के द्वारा कोई डायरेक्शन मिल सके, कोई समझ प्राप्त हो सके। कहते हैं, मैं अंधलहे की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं अन्ना हां, अंधा हां, पर तेरे नाम की स्टिक जो है, तेरे नाम की जो छड़ी है, वो मेरा आसरा। पाप के तेरे नाम की मैनू सपोर्ट है, तेरा नाम मेरा सहारा। पाप के तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम की छड़ी हाथ च होन तो बिना, मैं एक कदम भी चल नहीं सकता। जीवन दे विच अत्यंत खड़े हन, टोए हन, उतराव चढ़ाव हन, उन्हां दे विच जद तक तेरे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच है, ओ मेरा अंधले दा आसरा। तेरा नाम खुंदकारा। फिर आखते हैं, मैं गरीब, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मस्कीन, बिल्कुल जो खाली हो, जिसके पास कुछ ना हो। पर कहते हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही गरीब हां, क्योंकि तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम मेरा आधार है। तेरे नाम तो बिना मैं अपने आप नू गरीब और मस्कीन समझांगा, पर जब तेरा नाम मेरे पास है फिर मैं गरीब नहीं रह जांदा, क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी बाणी च आखदे हन,

0: फिर महाराज जी ने पूछी, महाराज धर्म दे विच पूजा दा बड़ा स्थान है, पूजा धूफ बत्ती बालो, जल छिड़को, फुल लियाओ, टलियां बजाओ, शंख बजाओ, बहुत किस्म दे नाल लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, आप जी की सुजेस्ट करते हो पूजा किमें की जानी चाहिए। महाराज जी आखते हैं साढ़े घर दे विच नाम ही पूजा है और कोई पूजा नहीं है, नाम जपना ही पूजा है। ए बाबा जी का जो नाम दे प्रति विचार आप जी सुना रहे हैं, कहते हैं
1: पूजा कीचे नाम त्याइए,
0: नाम त्याना ही पूजा करना है, जो नाम नहीं त्यादा बाकी रिचुअल्स करी जाता है वो बाहर बाहर है, बाहर बाहर है, वो पूजा नहीं। पूजा उदो होंदी है जदों किसी का नाम दिल च बस जाए, वो पूजा होंदी है। कहते हैं साढ़े घर के पूजा भी नाम जपना ही है और कोई पूजा नहीं है, कितना सिंपल है।

नाम जपण तो बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। सानू समझ लेना चाहिए और समझ के अपनी डायरेक्शन भी मोड़ लेनी चाहिए है। मेरा सुनना ही नहीं चाहिए।

0: वास्ते नाम जपना ही तीर्थ से जाना है, क्योंकि जो नाम जपेगा वो खुद ही तीर्थ बन जाएगा, खुद ही तीर्थ बन जाएगा। तो साडे वास्ते तीर्थ से जाना भी नाम जपना ही कहते हैं।
1: तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है,
0: तीर्थ भी नाम है।

गुरु महाराज ये दसो बहुत लोग वेद शास्त्र सिमरतियां ये लिटरेचर पढ़ते हैं क्योंकि तो असि भी वेद शास्त्र प्राण सिमरतियां आदि पढ़िए। महाराज ये आखते नहीं साढ़े वास्ते नाम जपना ही वेद पढ़ना है, नाम जपना ही साढ़े वास्ते वेद और शास्त्र है। कहते हैं नाम हमारे वेद अर नाद, फिर ये गारंटी करते हैं कि नाम जपन के नाल साढ़े ऐस लोक दे भी परलोक दे भी सारे कार्य पूरे हो जाते हैं।

ट्राई टू रिमेंबर दिस लाइन, नाम हमारे गुरु की से, क्योंकि गुरु की सेवा दे वास्ते बहुत ही कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो इवॉल्व होना चाहिए, नहीं तो इंसान थां ते सेवा करने की बजाय बेअदबी करी जाएगा, गुस्ताखी करी जाएगा और सेवा करने दे नाल हौमे वधाई जाएगा। पर नाम है जो उसकी आत्मक अवस्था नू उच्चिया उठाएगा, हंकार नू मिटेगा, अते उस दे विच ही सिर्फ गुरु की खुशी है, और किसे गल च गुरु की खुशी नहीं। हुण तक आप जी ने यह सुनया, भगत नामदेव जी आखते हैं नाम मैं अंधा हां, जीवन दे रस्ते उत्ते जे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच नहीं है तो मैं चल नहीं सकता, किते पहुंच नहीं सकता। नाम कहिंदे मेरे जीवन का आधार। गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दे बाणी दे विचों जो मैं प्रमाण दिते हैं ओ ए कहिंदे हैं कि नाम ही नाम है साडे घर दे विच, नानक के घर भूल गए केवल नाम, नानक के घर केवल नाम, कहिंदे साडे घर च सिर्फ केवल नाम है और कुछ नहीं, नानक के घर केवल नाम, नानक दे घर दे विच सुप्रीम टेक्निक जो है, मेथड जो है, वे जो है वो सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जी ना उधरे, सारा संसार रोगी है, उसका एक ही दारू है, एक ही इलाज है, वो की है नाम। संसार दे विच बहुत इग्नोरेंस है, अंधेरा है, तो दीवा की है नाम। लोग अत्यंत लोग तीर्थां ते तुरे फिरदे हन, गुरु जी महाराज कहिंदे हन तीर्थ भी नाम ही है, नाम जपना ही तीर्थ इश्नान है, नाम जपना ही तीर्थ इश्नान है। कहिंदे नाम ही साडे वास्ते वेद शास्त्र है, नाम ही साडे वास्ते, नाम जपना ही रब की पूजा है, अते नाम

अपने मन वृत्तियों को जोड़ के फोकस करके रखो और उस सारी की सारी विचार में अपने अंदर टिका के रखो जो सुने। इतना कुछ सुनन तो बाद नानक के कर केवल नाम, नाम ही तीर्थ, नाम ही पूजा है, नाम ही रोगानु खत्म करने वाली दवाई है, नाम ही जो दुख मिजरी सफरिंग जहर हैं साड़ी जिंदगी उन्हों का इलाज है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही गुरु की सेवा है। इस तो बाद जो ट्रूली एक सीकर है उसके मन दे विच ये जो एक अजीब मिस्टीरियस वंडरफुल मिरेकुलस इनवैल्यूएबल वस्तु है नाम, उसनों प्राप्त करने की इच्छा जागती कि किवें मैनू प्राप्त हो, जो कि तमाम चीजों का इलाज है, एक किवें मैनू प्राप्त हो। उस दे वास्ते इंसान दे अंदर कितनी लॉन्गिंग चाहिदी है, कितनी बर्निंग डिजायर चाहिदी है, कितनी तीव्र इच्छा चाहिदी है। जे इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं है, तो फिर वो वस्तु मिल नहीं सकती। गुरु महाराज जी का एक शब्द है, श्लोक है, जिस दे विच गुरु महाराज जी आखते हैं मेरी जो मैं सीख रहा नाम दा, अते मेरी सीकिंग दे विच जो इंटेंसिटी है उसनों देखो कितनी है। वो इतनी है कि जितनी देर तक वो नाम ना मिल जाए वो रज ही नहीं सकती, वो सेटल हो ही नहीं सकती, उसनों चैन आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं सकती। कहते हैं जिस तरह मिसाल उन्होंने तीन चार बहुत खूबसूरत दिखाई हैं, कहते हैं

डाइजेस्ट करनी थोड़ी जी मुश्किल है। बिन नावे सब चोर, बिन नावे की आख्या है आप आखो, बिन नावे सब चोर, तो असि सारे ही चोर हैं। बिन नावे सब चोर, यू मस्ट राइट डाउन दिस समवेयर। बिन नावे सब चोर, जो नाम नहीं जपते वो भले इंसान नहीं हैं, वो चोर हैं। कोई आखे इंसान के मैं तो कोई चोरी नहीं करता, तो मैं चोर किमें हो गया, मैं अपना काम धंधा करता हाँ, नौकरी करता हाँ, दसा नहों की किरत करता हाँ, ये मैनू चोर किस तरह कह देता है? इसका जवाब कोई मंगेगा ही ना, मैं तो चोरी कभी की थी नहीं, किसी का एक सेंट नहीं चुराया, तो मैं चोर किमें हो गया? महाराज जी कहते हैं बिन नावे सब चोर, बिन नावे सब चोर। हुण किस तरह असी इस चीज का जवाब लभीए कि असी चोर किमें होए? सब चोर एक अद्धा नहीं, सारी दुनिया चोर है। चोर इस तरह है, दाता किसे दिया हैं, ये बना अपनिया लेंदा है कि मेरिया हैं। किसे दी चीज नू तुसी अपनी बना लो ते कहो ये मेरी है, फिर चोरी नहीं हुई तो और की होया? किसे ने कोई गहना पहने होया है, तुसी किसे ना किसे टंग दे नाल उसनू उतार के आप पहन लो ते कहो ये मेरा है, चोरी हो गई? किसे दा घर संभाल लो कहो ये मेरा है, चोरी हो गई? ये जीवन ही परमात्मा का है, असि कहने मेरा है, माई लाइफ। वेन वी से माई लाइफ, असि इसनु फैब्रिकेट किया है, मैन्युफैक्चर किया है, इसनु बनाया है, क्रिएट किया है, then how come we can say this is my life? जदों असीं कहिंदे मेरी जिंदगी, किसे चीज एक किसे वस्तु किसे होर दी है, लेकिन असीं लाइफ नूं भी कह दिंदे आ कि ए मेरी है, जिसका सानूं पता ही कुछ नहीं कि चीज की है, उसनूं असीं कहिंदे मेरी है। ए चोरी नहीं है? ए तन इंसान सोचदा मेरा है, भला इंसान नूं पुछे जाए तेरा किस तरह होया, कदों तू इसनूं बनाया सी, तैन तो पता भी नहीं जदों ये बन रहा है, ये तो किसी ने तेनू गिफ्ट दिती है, इस दा डिजाइनर कोई होर है, इस दा क्रिएटर कोई होर है, इस दे पिछे इंटेलिजेंस किसी दी होर है, इतनी कॉम्पलैक्स मशीन नू चलान वाली विजडम कोई होर है, तू कहना मेरा है? ये किस तरह कह दिता मेरा है? ये क्यों नहीं कहता कि ये मैनू नहीं पता किसदा है? जिसदा है वही इसका मालक है, फिर तू ज्यादा सौखा होवेगा। पर महाराज जी कहते हैं प्राणी जाने ए तन मेरा, प्राणी कहता है तन मेरा है, वस्तु किसी होर दी है, लेकिन ये कहता है मेरी है, तो चोरी हो ही जा ना हुई, चोरी हो ही जा ना हुई। महाराज जी ने आख्या जान के रुक्त बिरक तन माल, ये जितने भी जितनी भी वनस्पति है, प्लांटेशन है, जिसनों असी अपनी इंडस्ट्री दे विच लैके आने पाव रॉ मटीरियल, ये सारे का सारा रॉ मटीरियल असी खुद बनाया है, लोहा सोना कोयला रबड़ दे दरख्त अते दरख्त जिहड़े लकड़ी पैदा करते हैं, फर्नीचर पैदा करते हैं, रॉक्स जिन्हां तों असी मार्बल लैके आने हैं, वो असी आप पहला जाके बना के आए हैं। इंटायर वेल्थ जिहड़ी है छुपी पई वह परमात्मा की साजी हुई है, उसनू फिर बाद च लिया के असी आखदे मेरी है, ए चोरी नहीं हुई तो फिर होर की होया? जिहड़ा संत है वह यह कहिंदा है मेरा मुझ में कछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। हुण साडे कोलों कुछ चले जांदा है तो असी रोना शुरू कर दिंदे हां कि चले क्यों गया, जे तुसी पहले दिन तो ही ये सोच के रख दे कि ये तुहाडा है ही नहीं, तो फिर तुहानूं तकलीफ किवें हुंदी?
जिस चीज नू अपना कहता और अपनी है नहीं, अपनी बना के बैठ गए खाम खा और फिर उसके जान उत्ते रोना शुरू कर दिया। इस तो वड्डी अज्ञानता और की हो सकती है। तो मैं आप जी के सामने पंक्ति पेश की थी, महाराज जी आखदे जिन कीते तिसे ना जानी, जिसने ये चीजा बनाईया हन, जो इन्हों का मालक है उसनु ते ए जानते नहीं हन, ते बिन नावे सब चोर। नाम तो बिना, नाम जपन तो बिना, नाम जपन तो बिना वो अवस्था नहीं आएगी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, वो जागरूकता नहीं आएगी, तो असी चोर दे चोर बने रहांगे। वैसे भावे असी दसा नहों की किरत भी करते हुई है, ता भी चोर दे चोर बने रहा, क्योंकि बाबा जी की बाणी ने आख्या। मैं आपकी की सेवा च एक लफ्ज भी गुरबाणी तो बाहर नहीं आखांगा करे। तो गुरबाणी नू चैलेंज करन दी ना मेरे च ना होर किसे च हिम्मत। गुरु महाराज ने आख्या बिन नावे सब चोर। होर आखते हैं, कहते हैं

फिर आखते हन नाम बिना सुना दरबार। जिस दरबार दे विच नाम नहीं है वह सुना है, उत्थे एम्प्टीनेस, उत्थे खालीपन, उत्थे लोनलीनेस, उत्थे डिप्रेसिवनेस। जिस घर च नाम नहीं है, जिस शरीर च नाम नहीं है, वह भी अंदरों सुना है, वह भी अंदरों खाली है, वह भी अंदरों एम्प्टी है, उत्थे भी लोनलीनेस। आज का कीर्तन इतना ही, क्योंकि समय समाप्त हो गया। इन दी नटशेल सारा जो मैं फिर आख दिया, नानक के घर केवल नाम, नानक के घर दे विच गुरु बाबा जी दे घर दे विच तीर्थ भी नाम ही है, इलाज भी नाम ही है, अते रोशनी भी नाम ही है, पूजा भी नाम ही है, गुरु दी सेवा भी नाम ही है। अते जो नाम तो बिना है, महाराज जी आख देन वो चोर है, उसका जीवन जल जाएगा, उसका जीवन डरौना लगेगा, अते उसका जीवन किसे काम नहीं है। एक पंक्ति में कह के कीर्तन समाप्त कर लगा हां, कहंदे विसरिया जिन नाम ते भोए भार थी, कहंदे जिन्हां नूं वाहिगुरु का नाम विसर गया है वह धरती उत्ते सिर्फ बोझ हन, जो इस धरती नूं भी तकलीफ दे रहे हैं, धरती उत्ते बोझ हन और कुछ नहीं। सो इतना कुछ याद रखना, कल नूं इत्थों अगां चलांगे। पूरी चुप दिखेवां, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पंक्ति